बारिश हमें ये सिखाती है कि झुककर बरसने वाले बादल ही धरती को जीवन देते हैं। इसलिए विनम्रता, प्रेम और अपनापन ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए इस सुहानी सुबह का आनंद लेते हैं। गर्मा गर्म चाय की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और मन में ढेर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: नजर से हाँ सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हाँ कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ बतला दो जहाँ को समझा दो खिदा
1: हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नई उम्मीद है और हर मुस्कान एक नई शुरुआत है। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत गीत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मौसम के इस मिजाज को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी भी तभी खूबसूरत लगती है जब मन उम्मीदों से भीगा हो।

प्रकृति हमें हर पल बराबरी, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। याद रखिए, जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। आज जब भी घर से बाहर

हमें हर पल बराबरी, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। याद रखिए, जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। आज जब भी घर से बाहर निकलें तो पेड़ों को देखिए, पंक्षियों की आवाज़ सुनिए, प्रकृति को निहारिए और कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालिए। मन को जितनी शांति प्रकृति देती है उतनी शायद कोई नहीं दे सकता।

दोस्तों, अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी कि बारिश की बूंदों की तरह आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए, मन में विश्वास बना रहे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आए। इसी कामना के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026,

0: असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, Prime Minister will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. These include inauguration of 232 grain storage godowns, Bhumi Pujan of Sahkar One, Bhumi Pujan of tissue culture facilities in Uttar Pradesh and Maharashtra, launch of National Cooperative Database, NCD 3.0, and Geotag mobile application, launch of National Dairy Development Board's Milk Supply Review Dashboard Portal. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team, SIT, probing the counting of donations received by the trust. The meeting will be held at the premises of Ram Temple at around 3 in the afternoon. According to an official notice issued on 28th of last last month. The agenda of the meeting includes consideration of the resignation

0: FM Rainbow 101.9.
1: వెల్కమ్ బ్యాక్ లిజనర్స్, మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 విత్ మీ ఆర్జే చరణ్. రెయిన్బోతో జీవితం తెలుసు కదా, రంగుల మయం. అరే, మాటల్లోనే స్టూడియోలోకి ఇంకొకరు వచ్చేసారు. హలో ప్రీతి మ్యామ్.
2: హలో చరణ్, కైసే హై ఆప్?
1: మే బహుత్ బడియా, ఆప్ కైసే?
2: भाई वैसे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर यहाँ पर आके जो बात है ना, सुपर से ऊपर हो जाती है.
1: सही, बहुत सही है. लेकिन आप तो हेडफोन से आपके कान में, तो क्या सुन रहे हैं आप?
2: मैं आपको सुन रही हूँ.
1: आपको सुन रहे? मुझे सुन रहे?
2: हाँ.
1: मैं तो यही बैठ रहा हूँ, आप कैसे सुन रहे मुझे?
2: मैं आप ही को सुन रही हूँ भाई, मैं नेचुरल फील लेके आपको सुन रही हूँ, रेडियो वाली नेचुरल फील पे सुन रही हूँ.
1: अच्छा, कैसा बता दीजिए मुझे भी.
2: अरे न्यूज ऑन एयर ऐप पे मैं तुम्हें सुन रही हूँ, यहाँ तो स्टूडियो में मैं तुम्हें आमने सामने तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ, पर रेडियो वाली नेचुरल फील लाने के लिए मैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर तुमसे जुड़ी हुई हूँ.
1: अरे वाह, हमें भी बता दीजिए, हमारे लिसनर्स को भी बता दीजिए कैसे सुनना है न्यूज ऑन एयर ऐप पर.
2: आपको न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करना है और बस अपना चैनल लगाना है और बस मस्ती में खो जाना है.
1: Yes, listeners, మరి మీరైతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్, అండ్ అప్పటి వరకు వింటూనే ఉండండి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9. మీకోసం ఒక సూపర్ హిట్ ట్రాక్ అయితే వచ్చేస్తుంది. స్టే ట్యూన్ టు 101.9.

FM Rainbow 101.9. नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर दिल के गहराइयों से आपका स्वागत है, जहां आज मैं आपकी धड़कन पर जीती आरजे प्रीति लेकर आ गई हूं फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। और बहुत सारे ज्ञान है मेरे पास ज्ञानचंद जी के। शुरुआत में तो अभी जहां पर हम शुरुआत करते हैं, तो ज्ञानचंद जी ना आज मुझे क्या बता रहे थे पता है, कि बोले कि भाई ये जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है ना, वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है। तो मैंने पूछा ये क्या है ज्ञानचंद जी, तो हाँ ज्ञानचंद जी ने मुझे बोला कि बिल्कुल साइकोलॉजिकल है। मैंने पूछा ऐसे, तो बोले भाई उसमें से एक जो है साइको है और दूसरा जो है लॉजिकल है। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि कौन साइको है और कौन लॉजिकल है। ये बात आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। और भाई मैं क्या जानती हूँ आपको बताएं, भाई मैं तो बस आपका दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। और जब आप आ ही गए हैं, तो आपके स्वागत में ढोल तो बजने ही चाहिए, है ना।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपकी दरकार मुझे आरजे प्रीति के साथ और

पी का पी जो मैं लेकर आया, यानी कि प्रीति का पिटारा जो लेकर आई हूँ, उसमें एक बात आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊं? नहीं नहीं आगे बढ़ते हुए ही एक बात बताऊंगी भाई। तो ये बात मुझे बतानी है कि अगर आप अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। और चलिए फंटरटेनमेंट एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हैं। एक बार ना श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि अजी सुनते हो, ये इस बार ना कैसी दाल ले आए हो, पक ही नहीं रही है। इस पर ज्ञानचंद जी ने कहा कि अच्छा यदि ऐसा है तो एक बार जरा उससे बात करके भी देख लो भाग्यवान, शायद मेरी तरह पक जाए। भाई अब इसके बाद में क्या हुआ ये आप मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। अभी कौन किसको पुकारा है, जैसे ने आपको बताया कि ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर हम ये अवश्य बताना चाहेंगे कि आप बाकी किसी को पकाए या ना पकाए, परंतु अपनी रसोई में ना दालें सही तरीके से अवश्य पकाएं। जी हाँ साथियों, क्योंकि हम कितना भी अच्छा भोजन ग्रहण क्यों ना करें, परंतु हमारा स्वास्थ्य जो है ना वो तभी सही रह सकता है जब हम सही ढंग से खुराक लेते हैं। और साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे किस ढंग से पकाया जा रहा है। जी हाँ, वो मैं ज्ञानचंद जी और श्रीमती ज्ञानचंद जी के पकाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो साधारणतः अपनी रसोई में दाल चावल पकाने की बात कर रही हूँ, है ना, याद रहे। चलिए फिलहाल अगर आप मेरी बातों से पक रहे हैं तो पकिएगा मत। बस आप तो हमें सिर्फ हुक्म दीजिएगा जनाब।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, आपकी धर्मगुरु मजीदी आरजे प्रीति के साथ। और यहाँ पर हम भोजन, जी हाँ, दालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो साथियों, हमारे भोजन में ना दालों का विशेष स्थान है, क्योंकि लगभग सभी प्रकार की दालें प्रोटीन का स्रोत होती हैं, है ना। इसके अलावा इनमें विटामिन बी, आयरन, फास्फोरस आदि भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और जो हमारे शरीर के लिए अत्यावश्यक भी हैं। अक्सर ना हम में से सभी दालों का सेवन करते हैं, परंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि हम में से बहुत कम लोग जो हैं वो इन दालों को सही तरीके से पकाने की विधि जानते हैं। जबकि ये पता होना भी अत्यावश्यक है ताकि दालों के पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट ना हो। साथियों, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां तक हो सके छिलके वाली या साबुत दालें ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि इनके छिलके में ही सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। लेकिन हम में से कई लोग जो है ना, छिलके वाली दाल को कुछ समय के लिए भिगोकर फिर उसे हाथों से रगड़ कर उसका छिलका उतार देते हैं, है ना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा करने से ना हम स्वयं को पोषक तत्वों से दूर कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं मशी गर्ल बहुत सारी बातें ऐसी आपके साथ साझा करूंगी। फिलहाल जुड़े रहेगा रेनबो एफएम 101.9 पर आपकी धड़कनों पर जुड़ी आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। और यदि आप अपना कोई पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232342। स्टे ट्यून्ड।

0: रेनबो 101.9
1: साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर अब बारी एक अहम जानकारी की।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं सुहाने गीतों का सफर आपके धड़कनों पर जुड़ी आरजे प्रीति के साथ आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब में। तो चलिए इट्स अ ट्राई लैंग्वेज शो, आगे बढ़ते हैं और हम दालों के बारे में बात कर रहे थे। तो साथियों हेल्थ एक्सपर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि दाल को हम जिस पानी में भिगोते हैं ना उसी पानी में हमें संभवतः जहां तक हो सके पकाना चाहिए, अन्यथा भिगोया पानी निकालने के साथ साथ दालों के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि पानी के साथ निकल जाते हैं। जहां तक संभव हो दालों में तेज मिर्च मसालों का प्रयोग ना करें, उन्हें अपने मूल यानी कि ओरिजिनल रूप में ही ग्रहण करना श्रेयस्कर माना गया है। अब बात करते हैं कि दाल खाने के समय की। अब आप सोच रहे होंगे कि दाल खाने के लिए समय का क्या, जब श्रीमती जी दे तभी खा लेना पड़ता है। हाँ हाँ भाई मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं आपके धड़कन पर जीती हूँ आरजे प्रीति हूँ। चलिए खैर यहाँ तक मनोविनोद की बात अलग है, लेकिन दाल खाने का भी समय, जी हाँ, जब मिले तभी खा ली ऐसा नहीं है साथियों। रात की बनिस्पत दिन में दाल का खाना जो है उत्तम माना गया है। विशेषकर भारी दालें जैसे कि मसूर की दाल, चना दाल आदि तो रात को अक्सर नहीं खाने की सलाह दी जाती हैं, क्योंकि इन्हें पचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है, जिसके कारण कुछ लोगों को रात में इन्हें खाने से गैस, पेट फूलना या फिर अपच की समस्या हो सकती है, इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है, खासकर यदि उनकी पाचन शक्ति संवेदनशील हो तो इसीलिए यदि आपकी पाचन शक्ति संवेदनशील है तो ये मसूर की दाल, ये चने की दाल, ये जो भी भारी दालें हैं ना वो उनका सेवन दिन में ही करें। जब बात मसूर की दाल की हो ही रही है तो चलिए ये मुंह और मसूर की दाल की और चलते हैं।

0: FM Rainbow 101.9
1: साथियों आकाशवाणी उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और इस स्तंभ में जो हम मैं जो प्रीति का पिटारा लेकर आई थी उसमें हम दालों की बात कर रहे हैं। तो साथियों दाल अक्सर हमारे भोजन का अभिन्न अंग मानी जाती हैं, पर ध्यान रहे कि दाल पतली हो। जी हाँ, क्योंकि ज्यादा गाढ़ी दाल पचने में अधिक समय लगाती है। इनके अलावा कुछ विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें दालों के संदर्भ में ये बताई जाती हैं कि बनाने से पूर्व दाल को भली भांति साफ कर लें और यथासंभव कुकर में ही पकाएं ताकि इनकी पौष्टिकता बनी रहे। अक्सर ये देखा गया है कि हम दाल को स्वादिष्ट बनाने हेतु मिर्च मसालों का उपयोग करते हैं, पर आज आपको एक सीक्रेट बताऊं, स्वाद के लिए मिर्च मसालों की एवज में ना एक नींबू आप दाल में डाल सकते हैं जो कि प्रोटीन को पचाने में भी सहायक होगा, है ना। तो भाई साथियों ऐसी और बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे और ज्ञानचंद जी भी कुछ कहने के लिए आतुर हैं। वो मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हैं। क्या मैसेज भेजा है? हाँ, ज्ञानचंद जी कह रहे हैं कि कल डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए। भाई बिल्कुल सही कहा। अब इस पर पता है आपको ज्ञानचंद जी ने क्या कहा? ज्ञानचंद जी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रात में टेंशन लेकर नहीं सोना चाहिए, पर मैं क्या करूं, मायके भेज दूं क्या अपनी श्रीमती जी को? भाई अब ज्ञानचंद जी किस और इशारा करना चाहते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप और ज्ञानचंद जी समझ लें, क्योंकि जोड़ों का दर्द तो जोड़े ही जानते हैं। भाई बहुत सारी बातें और भी मुझे आपके साथ साझा करनी है, थोड़ा सा ठहर जाइए।

साथियों, हम भी वक्त को रोकना चाहते हैं पर क्या करें, मजबूर है, रोक नहीं पा रहे हैं। और देखिए, आपसे बातें करते करते स्टूडियोज की घड़ी में कब 10:35 हो चले हैं पता ही नहीं चला। भाई, आपका साथ ही इतना प्यारा है और इस प्यारे साथ में प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आए हैं। मैसेज भेजा है रेडियो शौकीन सर्वर जी ने, वो कहते हैं कि भाई मैं टेंशन लेकर बिल्कुल भी नहीं सोता हूँ, मैं तो बस अपने जो है अपने टेंशन को मैनेज कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और जब हमने उनसे पूछा कैसे, तो कहते हैं कि रेडियो के द्वारा, इसीलिए तो अपने आप को रेडियो शौकीन सर्वर जी कहते हैं। और एक प्यारे से गीत की फरमाइश भी कर

0: रहे हैं, और इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं भी यही करता हूँ, पता है क्या, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। जी हाँ साथियों, यदि आप भी अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। स्टे ट्यून्ड।
1: ये समझो और समझा।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और मैं जो पी का पी यानी कि प्रीति का पिटारा लेकर आई थी उसमें हम दालों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दाल जो है वो अपने आप में पौष्टिक मानी गई है, परंतु यदि हमें दाल में टिंडा घिया पालक आदि सब्जियां जो डालेंगे ना तो इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है, ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है। पर विशेष ध्यान रहे कि दाल बासी ना हो। जी हाँ साथियों, बासी दाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी गई है, इसीलिए दाल उतनी ही बनाओ जितनी आवश्यक हो। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार काम के चक्कर में ना हम बहुत सारी दाल एक ही बार बनाकर फ्रिज में रख देते हैं बहुपयोग के लिए, यानी कि बार बार उसका हम उपयोग कर सकें उसके लिए, जो कि बहुत गलत है साथियों। ये बहुत गलत अभ्यास यानी कि गलत प्रैक्टिस है। इसके उलट जो है दाल उतनी ही बनाएं जितनी आवश्यक हो। ऊपर बताए गए सही तरीके से पकाई गई दाल स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होने के साथ साथ अधिकांश लोगों के लिए आसानी से पचने वाली भी होती है। और जब दाल जो है आपकी वो अच्छे से पक जाएगी तभी तो आपकी हार्ट दी बीट पे अच्छी रहेगी, और आप जो है आपके हार्ट दी बीट पे फिर डांस भी तो कर पाओगे, थिरक भी तो पाओगे। यस साथी, यदि आप भी कोई गीत अपना पसंदीदा सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9
1: आकाशवाणी के उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब और बेफिकर जी जरा हार्दिक बीट पे। जी हाँ साथियों, यदि आप बेफिकर जीना चाहते हैं तो आपको अपने आहार में बहुत सारे जो है पॉजिटिव चेंजेस लाने होंगे। और साथियों, आहार की बात तो काफी हो गई। जी हाँ, आहार के साथ साथ विहार भी तो उतना ही आवश्यक है ना। तो साथियों, जब आहार की बातें तो हो ही चली हैं, तो अब चलिए विहार की बात भी कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर के लिए आहार जितना आवश्यक है विहार भी उतना ही आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं आप। मैं खाने के बाद हम जो चलने की बात करेंगे। जी हाँ, आज की इस व्यस्ततम जीवन शैली में ना हम में से काफी लोग कुछ न कुछ कारणों से ना वॉकिंग के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। ऐसे में क्यों ना वॉक टू वर्क अपनाया जाए, क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, वॉक टू वर्क। आया कुछ समझ में? चलिए और भी इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम जो है ऐसा करेंगे ना, तो वॉक टू वर्क जो करेंगे ना, तो उसके साथ एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। और फिर कैसा जादू होता है आपके स्वास्थ्य में, वो तो भाई देखने लायक रहेगा साथियों। आप ही कहेंगे जादू किया।

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। और भाई साथियों, बात जब वर्क टू वर्क की चल रही है तो आपको बता दूं कि यदि आपका वर्क प्लेस घर से ज्यादा दूरी पर ना हो तो वर्क टू वर्क एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे ना बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि जैसे कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी भी होती हैं, ईंधन और पैसों की बचत होती हैं, पर्यावरण संरक्षण है, ट्रैफिक से राहत होती है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। भाई ये तो हुई आपके नज़दीक वर्क प्लेस की बात, है ना। पर जिनका वर्क प्लेस दूर हो उन्हें मायूस होने की कतई आवश्यकता नहीं है साथियों। वर्क प्लेस यदि दूर हो तो जहाँ से भी आप मेट्रो अथवा बस से उतरकर गंतव्य तक जाने के लिए, यानी कि आपके वर्क प्लेस तक जाने के लिए ऑटो आदि साधन यदि ढूंढते हैं तो वो ना करें। आप उस स्थान से वर्क की प्लेस तक वॉक करके जा सकते हैं, यानी कि आप उस स्थान से जहाँ से भी आप अपनी बस मेट्रो उतरते हैं वहाँ से आप वॉक टू वर्क का विकल्प चुन सकते हैं। और है ना खास बात कि भाई ये छोटे छोटे चेंजेस लाकर भी आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अपने दिमाग को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि परसों ना मुझे ज्ञानचंद जी बता रहे थे कि जब हम छोटे थे ना तो दो बादाम खाकर भी गणित के सारे फॉर्मूले याद कर लेते थे, लेकिन आज मुट्ठी भर खाकर भी पत्नी का जन्मदिन याद नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि बादाम नकली आ रहे हैं। भाई साथियों, बादाम नकली नहीं आ रहे हैं, बादाम तो असली ही है। पर ये जो बाकी का, जैसे हम स्कूल वगैरह जाते थे तो पैदल जाते थे, हमारी थोड़ी चहलकदमी होती थी, हम वॉकिंग करते थे, वॉक टू वर्क इसीलिए तो कहा है। और जब आप वॉक टू वर्क का विकल्प चुनेंगे तो आपको अपनी सेहत से, और अपनी सेहत से आपको अपने आप ही लव्यापा हो जाएगा।

0: Well, friends, that was Passion from Bridgman, Cato, Franti, and after that, I have a promo to share with you. Let's move towards that.
1: FM Rainbow 101.9.
2: Irani chai.
3: Bun maska.
2: हैदराबादी बिरयानी
3: टंगडी कबाब
2: कुर्बानी का मीठा
3: शहदूद मलाई
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड
2: एग्जैक्टली दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 टू 3 पीएम एवरी डे ऑन एफएम रेनबो 101.9
2: इट्स नॉट जस्ट फूड
3: इट्स कल्चर हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन
2: जश्न ए हैदराबाद

0: संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का

0: आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva in Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organised by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. India will host the two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship.

101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे स्तंभ में हम गार्डनिंग के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। तो हमारे कुछ लिसनर्स जो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के द्वारा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी हाँ, अलग अलग शहरों से, तो उनका कहना है कि थोड़ी सी टिप्स हमें हिंदी में भी बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि जो भी जब हम गार्डनिंग के लिए जब हम पौधे खरीद कर आते हैं तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा शाखाओं वाला पौधा लें। जी हाँ साथियों, बहुत ही छोटे पौधे का चयन ना करें। पौधा अगर छोटा भी हो

रख हो सके ज्यादा शाखाओं वाला पौधा लें। जी हाँ साथियों, बहुत ही छोटे पौधे का चयन ना करें। पौधा अगर छोटा भी हो तो उनमें अगर कई शाखाएं हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वे जल्दी घने और सुंदर बनते हैं। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी शाखाओं को काट कर उससे नया पौधा भी तैयार किया जा सकता है। इसमें आपको एक ही बजाय कई पौधे बनाने में आसानी होती है ना, समथिंग लाइक आम के आम और गुठलियों के दाम। और जहाँ तक हो सके सीजन, जी हाँ सीजन के अनुसार पौधे खरीदें, क्योंकि यदि आप फूलों के पौधे खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि फूलों वाला पौधा जो आप खरीद रहे हैं उसमें हमेशा छोटी छोटी कलियां होनी चाहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ताकि तभी वे आपके फूलों की जो चाहत है उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि कलियों से भरा पौधा आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसा पौधा खरीदने से बचें जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं, क्योंकि जिन पौधों में पहले से ही ज़्यादा फूल होते हैं ना, बाद में उन पर फूल खिलने की संभावना कम हो जाती है। बात जब फूलों की चल ही रही है तो आप ही में से आप ही की फरमाइश, एक प्यारा सा गीत।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथ ही आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम नमस्ते हेलो आदाब। आपकी धड़कनों बजती है आरजे प्रीति के साथ और उसके इस स्तंभ में हम गार्डनिंग पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, यदि आप अपने घर के गार्डन के लिए पौधे रोप रहे हैं तो उन्हें जब लेके आते हैं आप, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उस पर हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। और वैसे ही हम कुछ मैसेजेस भी शामिल कर रहे हैं। वैसे सारे जो मैसेजेस हैं उनमें गीतों की फरमाइश आई है और उन फरमाइशों को हम जहाँ तक हो सके पूरा कर भी रहे हैं। और ज्ञानचंद जी ने मैसेज भेजा है, कहते हैं कि श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना एक दिन, वैसे अभी समय दोस्तों लंच का आपका हो रहा होगा तो शायद आपको भी यही याद आ रहा होगा, तो एक बार श्रीमती ज्ञानचंद जी ने ना गूगल से पूछा कि हेलो गूगल, बिना नेल पेंट खराब किए बर्तन कैसे धोएं। जी हाँ, बिना नेल पेंट खराब किए बर्तन कैसे धोएं। तो इस पर तुरंत जवाब मिला, अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत आसान है, अपने पति से धुलवाएं। पर साथियों, आप कभी ऐसा काम मत कीजिएगा, जिनका काम है वो करे तो ही ज्यादा अच्छा है, वरना उसके बाद में, हाँ वैसे आप मना करेंगे तो क्या होगा ये भी आप जानते हैं, और यदि आप करेंगे तो क्या होगा ये भी आप जानते हैं भाई, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ। Yes, जोड़ों का दर्द जोड़े ही तो जानते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे पौधों की, पौधे तो सीजन के अनुसार हमें हमेशा पौधे खरीदने चाहिए। जी हाँ साथियों, जब भी हम पौधे खरीदते हैं तो सीजन का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कई ऐसे फूलों के पौधे होते हैं जिनका मौसम ना होना तो वे एक बार तो पूरी तरह से खत्म भी हो जाते हैं। अगर उनकी देखभाल सही तरीके से ना की जाए तो अगले सीजन तक तो कई बार ये बचते भी नहीं है। इसीलिए पौधा चाहे फूलों का हो या सजावटी पौधा हो या फिर किसी भी फल का पौधा क्यों ना हो, सीजन का, मौसम का अवश्य ध्यान रखें।

यस, ये इसीलिए बताया, ये गीत इसीलिए आपके सामने पेश किया क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए।

0: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हेलो रेनबो, जिसका है आप सभी को बेसब्री से इंतजार। यस, लाइव फोन इन प्रोग्राम जहां पर हम और आप बात करेंगे। और हमारे फोन नंबर्स हैं 0402323 00302323 4821 या फिर 2970417 15 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी फोन लाइन्स बिजी आ रही है तो दोस्तों नाराज नहीं होने का, टेंशन लेने का, बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर देने का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91040232348222। और आगे इस स्तंभ में आगे बढ़ने से पहले हम किस विषय पर बात करेंगे वो बताने से पहले ज्ञानचंद जी का ज्ञान आपको बांट दूं। भाई एक बार ना ज्ञानचंद जी ने पूछा कि पत्नी में बड़ा कौन होता है, पति पत्नी में बड़ा कौन होता है। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने बोला कि पत्नी बड़ी होती है, श्रीमती ज्ञानचंद जी ने बताया कि पत्नी बड़ी होती हैं। तो इस पर ज्ञानचंद जी ने पूछा कि क्यों भाई, ऐसे क्यों, पत्नी बड़ी क्यों होती है। तो इस पर श्रीमती ज्ञानचंद जी ने कहा कि पति में छोटी ई की मात्रा लगती है और

0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
1: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్లు ఆ ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
0: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9.
2: और साथियों, आकाशवाणी के उसी एफएम रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो. जी हाँ, जहां आपसे आपकी बात होगी. यस, तो यहाँ पर विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले साथियों, परसों ना मैं गौरांग दास जी को सुन रही थी, तो उन्होंने परिवार के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब वे वहाँ कहीं अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर देने गए थे, तो वहाँ पर एक बच्चा वहाँ पर उनसे हिंदी में बात कर रहा था. तो ये बड़े ताज्जुब में रह गए कि यहाँ पर जब किसी को हिंदी आती ही नहीं है, तो फिर ये बच्चा इतनी अच्छी हिंदी कैसे बात कर रहा है. तो उन्होंने गौरांग दास जी ने उनसे बात की और पूछा कि आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है बेटा. तो उन्होंने, उस लड़के ने जो जवाब दिया वो वाकई में गौर करने लायक था. साथियों, उस लड़के ने कहा कि मेरे माता और पिता का जो है संबंध विचलन की डिवोर्स हो चुका है, तो मैंने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे हर एक्सपीरियंस दिया है, हर अनुभव करवाया है, हर चीज़ का, बस मुझे एक परिवार का अनुभव नहीं करवाया आपने, तो आप मुझे परिवार का अनुभव करवाइए. अब चूंकि बच्चे की बात वहां पर तो पूरी हो नहीं सकती थी, तो उन्होंने, उस लड़के के पिता ने उस लड़के को जो है भारत भेजा. जब लड़का भारत आया तो यहां पर वो पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगा. पेइंग गेस्ट के तौर पर जहाँ पर वो रहने लगा, तो उसने एक बात बताई कि मैं यहाँ पर 2 साल तक रहूँगा, और 2 साल तक यदि आप मुझे परिवार का अनुभव करवा

0: बातें हैं तो मैं आपको प्रति माह यानी कि हर महीने 1 लाख रुपए का किराया दूंगा। तो इस पर भाई जब वहां पर जो पेइंग गेस्ट के लिए रहा उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी, और वो लड़का जो है 2 साल यहाँ पर परिवार में रहा और उसने परिवार क्या होता है ये जाना। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं परिवार क्या है जानने के लिए, तो हम जो यहाँ रहते हैं वो अपने परिवारों को तोड़ने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या कारण है आज हमारे भारत देश में परिवारों के टूटने का? इस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बताइएगा मुझे आपकी क्या राय है। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323-00-30, 2323-4821 या फिर 2970-4715 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फोन आपके कॉलर्स जो कॉल कर रहे हैं उनकी ओर बढ़ने से पहले एक बात सभी से यही नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो।
1: हेलो, वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी, श्रीनिवास राव मलकपेट माँ।
0: वेरी वेरी हैप्पी आफ्टरनून श्रीनिवास राव जी, मलकपेट से स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा
0: बहुत
1: है।
0: बहुत
1: तो
0: धन्यवाद।
1: इसके पहले क्या था, अपने कंट्री में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो
0: जी
1: ये रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, जैसा जैसा अपने कुछ सेलफोन आ गए, ये पूरे आ गए, तो बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के शादियां होने लगे, तो क्या हुआ, हल्का हल्का मेरे को उधर नौकरी लग गई, मेरे को इधर नौकरी लग गई, मेरे को उधर नजदीक हो जाता, इधर नजदीक होता, बोल के हल्का बच्चे घर से भी बाहर निकलना शुरू कर दिए। तो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए क्या होगा, वो तो फैमिली सिस्टम जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था वो बिछड़ने लगा, खत्म होने लगा। तो
0: खत्म होने लगा। बिल्कुल
1: आजकल जो सो आपको किधर भी ज्वाइंट फैमिली दिखेगा नहीं, तो 99% आपको जो है सो इंडिविजुअल फैमिली
0: जी हाँ, न्यूक्लियर
1: दिखेंगे।
0: फैमिलीज ही
1: तो
0: दिखेंगे।
1: उससे क्या हो गया, वो तो ये फैमिली सिस्टम जो है वो पूरा ब्रोक होते जा रहा है। तो
0: बिल्कुल
1: ये मसला अगर कभी भी आया तो अपन घर में सब बैठ के, माँ बाप माँ भोंजे बाप भोंजे भाई भोंजे सब लोग बैठ के बात करते थे, अरे उसको
0: बिल्कुल
1: कैसा सुलझाना बोल के सोचते थे। मगर आजकल क्या होगा, इंडिविजुअल फैमिली होने से
0: कोई है ही नहीं
1: वो
0: घर में।
1: क्वेश्चन का सामने से नहीं आ रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: उसके
0: बिल्कुल
1: उसमें इसमें ले लेके खत्म कर दे रहे। तो उसी ने क्या, मेरा कहना का क्या है, अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अगर आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेंगे, एक फैमिली जुड़ के रहेगा, अच्छा रहेंगे, सब मिलके रहेंगे, अच्छा बात कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, कुछ भी करना
0: बहुत
1: है, कुछ
0: सही
1: भी
0: बात आपने
1: मसला है
0: साझा
1: उसको
0: की।
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये कर लेंगे, उल्ट साल कर लेते बोल के मेरा सोचना है,
0: बहुत अच्छी बात
1: मेरा
0: आपने
1: क्या।
0: साझा की श्रीनिवास राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। साथियों अपने अगले कॉलर की ओर जुड़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो, लगता है इन्होंने अपना कॉल कट कर दिया है। कोई बात नहीं, अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। हेलो रेनबो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: हैप्पी आफ्टरनून। हैप्पी आफ्टरनून नरसिम्हा राव जी, प्रेमावती पेट से स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत दिन के बाद है, फिर भी हमारा नाम वगैरह सब याद रखे आपको।
0: चलिए इसीलिए तो कहती है कि मैं आपकी धड़कनों पर जीती हूँ, आरजे प्रीति हूँ।
1: अब आपका जो दिमाग है ना उसको तारीफ करना पड़ेगा मैडम।
0: धन्यवाद धन्यवाद।
1: नरसिम्हा रेड्डी प्रेमावती पेट से बोल रहा हूँ। अभी जब पहले से क्या मैडम, ये जो फैमिली कंबाइंड रहते थे ना मैडम, एक घर में किसी की शादी होना है तो खाली, अब आजकल वो ये सब देख रहे हैं ना मैडम,
0: जी
1: उस जमाने में वो कुछ भी नहीं था, बड़ा फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है।
0: नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है नरसिम्हा राव जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि परिवार क्यों टूट रहे हैं, कारण क्या है परिवार
1: टूटने का
0: जैसे।
1: कारण तो
0: हाँ
1: यही है मैडम, ये जो है ना मेन जो है ना, बच्चे अपने अपने पढ़े में उधर इधर जा रहे, और एक क्या है बोले तो, ये बहू बेटियां है ना मैडम, ये उनको फैमिली में बराबर नहीं जम रहा, उनको अम्मा बाबा को दूर कर ले रहे, भाइयों में लड़ा झगड़े हो रहा, ये परिवार पूरा टूट हो रहे। बीच में क्या है, ये
0: मतलब
1: फोन
0: आपका ये कहना है कि अक्सर शादियों के बाद में ऐसा हो रहा है।
1: पहले हाँ शादी के बाद ही हो रहा था, पहले तो भाई सब लोग एक जगह रहते थे ना मैडम, उसके बाद में इनको नहीं जम रहा, पहले जमाने में तो जमता था, कम
0: फिर
1: बड़ी
0: जब
1: फैमिली
0: पहले
1: रहती थी
0: जमाने
1: तो
0: में जमता था तो आज नहीं जमने का कारण नरसिम्हा राव
1: कारण
0: जी।
1: तो ये मैडम मैडम वही मैडम मैडम आजकल नहीं समझ रहे, अपने आप को सब हुशियार समझ रहे।
0: अच्छा
1: अब ये तो परिवार का बोलता, अब तो किसी के पास आना जाना तो बंद हो गया, फोन आने से फोन
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पे ही
0: बस।
1: बात कर रहे, और पैसों को ज्यादा इज्जत दे रहे, और अच्छे
0: इनफैक्ट
1: को तो
0: फोन
1: इज्जत,
0: पे भी बात कहाँ हो रही है, बस एक मैसेज भेज दिया और खत्म बात।
1: बस जरूरत पड़े तो कर रहे खाली ऐसी। पहले तो पैदल पैदल 10-10 किलोमीटर जाके हाल चाल पूछ के आते थे, पैदल
0: बिल्कुल
1: भी जाते थे, आजकल फोन है, फोन
0: बिल्कुल
1: के लिए
2: एक 10 सेकंड भी नहीं लगता फोन करता, वो भी नहीं पूछ रहे।
0: वो भी नहीं है, बस एक
2: अच्छा
0: मैसेज भेज
2: बस इतना
0: दिया,
2: ही करते कि
0: हो
2: भाई
0: गया।
2: आने जमाने में

0: अभी परिवार टूटने का मेन क्या है मैडम? बोल तो आजकल तो फैमिली छोटे कैसे बोलते, ऑपरेशन हो जा रहे, ये या दो खत्म, दो वही चार ही हो जा रहे, जो दो मरद, दो एक बच्ची एक बच्चा,
1: बस हम
0: और
1: दो,
0: चारों भी
1: हमारे दो,
0: दोनों
1: हाँ
0: दोनों नौकरी कर रहे,
1: नौकरी कर
0: दोनों
1: रहे
0: बच्चे
1: हैं,
0: हॉस्टल को जा रहे, ठीक
1: बिल्कुल बहुत सही
0: है,
1: बात।
0: घर में कोई भी नहीं, सुनसान हो गया मैडम।
1: घर सुनसान हो गया है, यही आपने जैसे बताया कि परिवार टूटने का कारण अक्सर जो है, जब घर में पढ़ाई होकर बच्चे बाहर जाते हैं तब परिवार टूट रहे हैं, ऐसे आपका कहना है, या फिर शादियों के बाद में। खैर इस पर हम फिर बात करेंगे, पर जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो,
2: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून आदाब प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: जी शेर खान बोल रहा हूँ,
1: शेर
2: गुड
1: खान साहब,
2: आफ्टरनून मैडम।
1: स्वागत है आपका। जी
2: जी सभी सुनने वाले भाई बहनों, दोस्तों को, सबको प्यार भरा सलाम आदाब। अल्लाह से दुआ करता हूँ सबको खुश रखे, आबाद रखे,
1: धन्यवाद,
2: सेहत
1: बहुत
2: मंद
1: बहुत
2: रखे, और
1: धन्यवाद।
2: अपने फैमिलियों में अच्छा खासा प्यार और बंधन बांधे रखने की एक अल्लाह हिदायत दे सबको।
1: धन्यवाद, मतलब ये बहुत आजकल ज्यादा
2: जी
1: जरूरी ये है, बात है।
2: जी जी जी देखिए प्रीति जी, पहले तालीम कम थी, मतलब शिक्षा कम
1: जी
2: थी, उतना ये नहीं था, लेकिन अखलाक और आमाल जो है
1: ज्यादा
2: एकता
1: थे,
2: बहुत ज्यादा थी। अब
1: बिल्कुल
2: सब कुछ आसानी से सब कुछ हो रहा है, तालीम ये कुछ सब तो मिल रही है, लेकिन तरबियत की कमी है, और
1: तरबियत की
2: ये
1: कमी
2: इस
1: है,
2: वजह से
1: बहुत
2: हो
1: सही।
2: रहा है कि एक दूसरे को वक्त नहीं मिल पा रहा, जो पहले वक्त मिलता था
1: एक दूसरे को
2: परिवार में,
1: वक्त
2: अपने
1: नहीं,
2: पेरेंट्स
1: यहां
2: का,
1: पर
2: अपने माँ बाप का, भाई
1: शेर
2: बहनों
1: खान
2: का, एक
1: साहब,
2: दूसरे को समझ और समझाते थे।
1: शेर खान साहब यहाँ पर
2: नहीं
1: आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे। आपने कहा कि पहले वक्त मिलता था और आज वक्त नहीं मिल रहा है, समय तो उतना ही है, पहले भी 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी 24 घंटे, फिर वक्त नहीं मिलने का कारण?
2: वो वक्त तो हमेशा का कायम है, लेकिन हमको एक दूसरे के साथ जुड़ने जुड़ाने का, समझने समझाने का वक्त, ये वक्त की बात कर रहा हूँ मैं जी। जैसे हम
1: नहीं।
2: पहले जो है तो समझाने के लिए, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने के लिए, और कोई बात बोलने बताने के लिए, तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का जो वक्त रहता, आज वक्त नहीं है, एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे, कहने का मतलब
1: हाँ, ये
2: वक्त की
1: बताइए
2: कमी है
1: आप कि
2: और मन
1: वक्त
2: मुटाव
1: एक
2: है।
1: दूसरे
2: हाँ
1: को नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सही।
2: हाँ और मन मुटाव है, मतभेद तो होना चाहिए, पर मनभेद में
1: मन भेद हो गया
2: यहाँ
1: है, ये
2: पे
1: बहुत सही कहा
2: महामारी चल
1: आपने।
2: पड़ी है, कंपटीशन चल पड़ा है, और खास बात क्या है, तरबियत नहीं है कि भाई रिश्ते नाते क्या है, उसकी अहमियत क्या है, फैमिली के
1: बहुत
2: साथ रहना
1: सही,
2: कैसा रहना क्या रहना, ये क्या है, ये नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये पहले जो था तो समझता था, भले ही पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन
1: ये
2: मान
1: बातें
2: सम्मान
1: पता
2: मर्यादा
1: होती
2: ये सब
1: थी।
2: कुछ जानते थे, आज
1: बहुत अच्छी बात
2: इस
1: आपने
2: चीज में
1: साझा
2: कमी हो
1: की,
2: रही है आज।
1: बहुत सही, बहुत सही शेर खान साहब, बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। साथियों, हम आपकी ओर बढ़ने से पहले यही आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि कृपया अपनी बात संक्षेप में साझा करें, ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
3: FM Rainbow 101.9
1: और FM Rainbow 101.9 पर आपको दे रहे हैं ये एक जानकारी।
4: ईरानी चाय,
5: बन मस्का,
4: हैदराबादी बिरयानी,
5: टंगड़ी कबाब,
4: कुर्बानी का मीठा,
5: शहदूद मलाई,
4: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
5: And every dish has a story waiting to be told.
4: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
5: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
4: It's not just food.
5: It's culture, history and flavor rolled into one.
4: Jashne Hyderabad.
3: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि भारत में परिवारों के टूटने का कारण क्या है, इस पर कुछ जानकारियां हमें मिली, कुछ और कॉलर से हम बात करेंगे। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं आप ही में से आप ही की फरमाइशों की और मैसेजेस की और। मैसेज भेजा है नवी मुंबई से रीमा जी तिवारी ने। जी हाँ, रीमा जी तिवारी जो है नवी मुंबई से हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर जुड़ी हुई और एक प्यारे से गीत की फरमाइश कर रही हैं। तो चलिए हम एक प्यारा सा गीत आपकी नजर करते हैं, स्टे ट्यून्ड। साथ ही यदि आप भी यदि न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने कोई अपना कोई मैसेज किसी अपने को पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई गीत किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +9104023234822। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या है मैडम?
1: टॉपिक है भारत में परिवार क्यों टूट रहे हैं।
0: परिवार क्यों जुड़ रहे हैं? अच्छा मैडम, आंग है मैडम
1: जी हाँ।
0: के रमेश उस्मान में पहले के वैसा नहीं है मैडम। हमारे చిన్నప్పుడు మొత్తం మా ఇంట్లో 13 మంది, 4 ఫ్యామిలీ కలిసి ఉండింది అన్నమాట. పెద్దవాళ్ళ మాటలు బాగా అప్పుడు వినేది.
1: ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు అట్లా లేదు?
0: పెద్ద పిల్లల మాటలే పెద్దవాళ్ళు వినవలసి వస్తుంది, అట్లా అయితుంది అన్నమాట.
1: तो इस बात से रमेश जी एक बात मुझे याद आई कि मैंने परसों किसी से बोलते हुए ये सुना, किसी को ये कहते हुए सुना था कि हम आखिरी जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स को भी सुन रहे हैं और अपने बच्चों को भी सुन रहे हैं। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आजकल क्या हो गया, बच्चों का बात अपन सुनना पड़ रहा।
1: वही तो बता रहे हैं ना।
0: बिल्कुल, अब क्या करेंगे, चल रहा जब वैसा चला वैसे चला, चला नहीं, अब कुछ भी नहीं
1: बस
0: कर
1: जैसा
0: सकते,
1: है वैसे चलाना
0: कुछ
1: है।
0: भी नहीं कर सकते, तो हो जाता।
1: बहुत सही कहा रमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए साथियों जल्दी से एक मैसेज की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा मैसेज भेजा है किन्होंने भेजा है, अश्विन फ्रॉम कोटी। ओके, कोटी से अश्विन जी मैसेज भेजते हैं, सभी को जय श्री कृष्ण कह रहे हैं, सभी की ओर से आपको भी जय श्री कृष्णा। और अश्विन जी कहते हैं कि संसार में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है, इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत वो केवल कहीं कहीं ही जन्म लेती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और साथ ही आगे आप लिखते हैं कि अच्छे कर्मों की खुशबू देर तक साथ रहती हैं, चाहे समय बदल जाए। जहां तक सोच सकारात्मक होती है वही सफलता स्वयं चलकर आती है। और शब्द कम हो लेकिन भाव सच्चा हो, उच्च कोटि के हो, तो वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफ़ी लंबा मैसेज आपने भेजा है, हम पूरा तो शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। और एक बात जो आपने बहुत विशेष कही है वो बता दूं कि कल हमारे पास ज़्यादा समय होगा, यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। ज्ञान का संदेश देना ही आपकी दक्षिणा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और अगला मैसेज आया है, अगला मैसेज आया है नमिता जी का। ओके, काचीगुड़ा से नमिता जी मैसेज भेज रही हैं। और नमिता जी कहते हैं कि व्यवहार एक आईना है जिसमें अहंकार और संस्कृति की झलक दिखती है। बहुत सही कहा आपने। और साथ ही एक और बात आपने बताई है कि ऐसी आस्था का भी कोई मूल्य नहीं जिसको आचरण में ना ला सके। बहुत अच्छी बात नमिता जी आपने भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ मैसेजेस हैं, शामिल करेंगे, पर फिलहाल सन सिटी से मैसेज भेजा है रविंदर राव ने, और एक मूवी एक गीत की फरमाइश कर रहे हैं। पर फिलहाल हम एक कॉलर की ओर बढ़ना चाहते हैं, देखते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। आज हमने आपसे पूछा कि भारत में, हमारे देश में परिवारों के टूटने का मुख्य कारण क्या है। हेलो रेनबो, लगता है ये शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए हम एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें और पुनः आपसे जुड़ेंगे।
2: ब्रो ఆకలేస్తుంది, బిర్యానీ తిందామా?
3: ఏ ఎప్పుడు బిర్యానీ ఏం తింటాం, పద హలీం తిందాం.
2: తిందాంలే గాని హలీం అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా?
3: హలీం ఎక్కడి నుంచి రావడం ఏంటి, మన హైదరాబాదే కదా.
2: కాదు, హలీం ఒక పర్షియన్ డిష్ నుండి ఎన్నో మార్పులతో ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత పాపులర్ అయింది.
3: ఓ అవునా?
2: ఇంకా దాంట్లో చాలా న్యూట్రిషియస్ వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి.
3: సరే కాని అసలు ఇవన్నీ నీకు ఎలా తెలుసు?
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
3: జష్నే హైదరాబాదా, అదేంటి కొత్తగా?
2: ఒక్క హలీమే కాదు, ఇలాంటి మరెన్నో డిషెస్ గురించి మనందరికి చెప్పడానికి వచ్చేసింది జష్నే హైదరాబాద్ ఎట్ 2 PM ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9.
4: FM Rainbow 101.9.
1: और साथियों आकाशवाणी से उसी FM रेनबो 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि हमारे देश भारत में परिवारों के टूटने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि कई, जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर से लोग परिवार का जो है अनुभव लेने के लिए हमारे पास आते हैं, पर हम जो यहाँ पर हैं हमें उसकी कदर नहीं। तो इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
5: हेलो हेलो,
1: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
5: वेणुगोपाल बोल रहे हैं, सिकंदराबाद से।
1: सिकंदराबाद से वेणुगोपाल जी जाखोटिया हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है वेणुगोपाल जी आपका। कैसे हैं आप?
5: बस मैडम ठीक है, सब ठीक है।
1: बहुत अच्छी बात, बताइएगा।
5: या मैडम, आपका आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, एकदम जलता हुआ टॉपिक है,
1: ज्वलंत जी।
5: ऑलमोस्ट बता दी, इसमें दो चीज मैं बताता हूँ
1: जी।
5: इसमें देखिए दो चीज होगी, अभी से इतना वेस्टर्न कल्चर जितना भी आ गया है ना अपने पास, चाहे कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म हो, ये दोनों जो है स्टार्टिंग से पहले

0: इन परिवारों के ऊपर ही टारगेट करे। कम्युनिज्म क्या बोलता था, खाली देश के लिए जियो, देश के लिए जियो बोल के परिवारों को तोड़ देता था। और कैपिटलिज्म क्या बोलता, सिंगल परिवार करो, तुम तुम्हारा अकेला देख लो, कोई भी तुम्हारे आजू बाजू नहीं रहता बोल के वैसा करते हुए पूरे परिवार काट दिए। उसके बाद और आया आज के लिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या करते, एक फैमिली कोई डालता फोटो, भाई हम लोग चोरों कच्चा माउंटेन पे घूमने गए, बोलता मेरे पास सास है मैं नहीं जा सकती, बोलते उन सास से अरे यार ज्वाइंट फैमिली में रहते एंजॉय नहीं कर सकते, ये हो गया।
1: अच्छा विश्लेषण है।
0: हाँ और एक क्या है, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो गया भाई, अब जैसा कोई जब जेंट्स अगर घूमने जा रहे तो लेडीज बोलते यार हम भी हमारी किटी बनेंगे, हम भी हम तो आप नहीं छूट सकते, आपको घर में रहना है, तो बस उससे क्या होता नहीं
1: हम चले जाएंगे।
0: ये पूरे मतलब इसी का आप देख लो, 10-15-20 साल से आप देख लो, ये पूरे क्या है अपने ज्वाइंट फैमिली काटने के चक्कर ही थे पूरे। ये एडवर्टाइजमेंट में देख लो आप, सिर्फ दो बच्चे, एक बच्चा बता के साहब बोलता है ये परिवार कितना सुखी है, एकता वाला बिल्डिंग बताता, एक परिवार में एक ही बताता, ज्वाइंट परिवार के दो चार एड भी देखो आप, ज्वाइंट परिवार के दिखते आपको
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मतलब आपको पहले से ही टारगेट ऐसा बना दिए कि आपको मतलब आपको हर जगह पे वो परिवार काटना ही चालू कर दिया 20-25-30 साल से, देख लो आप हर एड में, देख लो हर जगह पे देख लो आप
1: बिल्कुल। ये जो है कंज्यूमर बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि
0: जैसे मेरे चार
1: मार्केट बनाना है।
0: हाँ चार भाई के लिए चार फ्रिज रहेंगे, अगर पहले हमारे जमाने में एक फ्रिज रहता पूरे चारों जने उसमें रहते थे, चार भाई के लिए चार फ्रिज, चार टीवी, चार गाड़ियाँ, चार
1: सब कुछ बदल जाएगा, मार्केट ऐसे ही बनेगा।
0: बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन काट दी है तो दुनिया के बढ़ जाते बोल के, बस सिंपल है।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है। और
0: हाँ ऐसा
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई वेणु गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों वेणुगोपाल जी का कहना है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस पर जो है इसमें निहित है, मतलब जैसे कि बहुत सारी बातें उन्होंने जो बताई कि एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया और बहुत सारी बातें। तो चलिए अगले कॉलर का क्या कहना है इस विषय पर, ये हम जानते हैं। हेलो रेनबो।
2: हेलो प्रीति जी, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार प्रभाकर राव जी, बताइए।
2: वेरी गुड, आपकी मेमोरी पावर को धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद, बताइए।
2: बिल्कुल, अपना परिवार बोले तो मैडम क्यों भारत के अंदर नहीं रह रहे बोले तो हमारा इसमें छू, हम चारों भाई थे, चारों में दो बाहर रहते थे मध्य प्रदेश में, दो भाई मिलजुल के रहते थे।
1: बहुत अच्छे।
2: जब शादियां नहीं हुआ दोनों को भी, हम दोनों को जैसी हमारा तीसरा भाई को शादी हुआ हमारा साथ हाइसो वाले को, एक साल के अंदर बदल गया वो आदमी। बोले तो इसके मतलब क्या है बोले तो, नालुगु जड़लु कलिसि ఉండవంట గాని నాలుగు జుట్టులు కలిసి ఉంటాయని తెలుగులో చెప్తారు. నాలుగు అన్నదమ్ములు కలిసే ఉంటారు, జుట్టులు అంటే అన్నదమ్ములు, జడలు అంటే ఆడవాళ్ళు. పెళ్లిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత వస్తారు వాళ్ళు. ఏకాంత సేవలో ఉన్నప్పుడు అగో మా బావగారు ఒక చీర రెండు చీరలు తీసుకొచ్చారు.
1: ఓకే ఓకే ప్రభాకర్ రావు జీ, తో ఆప్కా యే కహనా హై కి అక్సర్ జో హై షాదియో కే బాద్ మే యే ఐసా హో రాయా హై, ఆప్కా యే కహనా హై రైట్?
2: ఔర్ క్యా హై బోలే తో, యే ఈగో జ్యాదా హో గయి.
1: ఓకే
2: ఈగో జ్యాదా హో గయా, ఔర్ ఖానే మే భీ బదల్ గయా, मिर्ची पर वो नमक को ज्यादा खा रही है लोग,
1: मिर्च मसाले ज्यादा खा रहे हैं, इसके लिए उनकी जो है तामसिक प्रवृत्ति हो रही है,
2: गुस्से में ज्यादा
1: गुस्सा, वही तामसिक प्रवृत्ति हो रही है, इसीलिए अलग अलग रह रहे हैं।
2: ये कर्नाटक के अंदर मैं एक बुक में पढ़ा था मैडम प्रीति जी, एक क्विंटल चावल पका थे उनके घर में,
1: एक क्विंटल, बहुत अच्छे
2: क्विंटल, बोले तो उनकी है आदर्श कुटुंबम बोलते हैं।
1: बहुत सही बहुत सही, आजकल ऐसे परिवार विरले ही देखने को मिलते हैं प्रभाकर राव जी, बहुत सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर मतलब हमारे काफी सारे कॉलर्स का जो कहना है कि भाई शादी के बाद में, तो उस पर भी एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि भाई शादी के बाद में ही ऐसा क्यों होता है, क्यों जब वो लड़की बाहर से आ रही है तो वो आप अपना खुद का वो परिवार छोड़कर आई है, तो आपको वो ऐसे क्यों करना चाहेगी, आपको अपने परिवार से अलग क्यों करना चाहेगी? ऐसी बात नहीं है कि केवल लड़कियों के, केवल शादी होकर आई हुई लड़कियों के कारण ही ऐसा होता है, ये ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की मानसिकता मिली हुई है। तो चलिए अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी आई एम फाइन, आप कैसे मजबिन जी?
3: अच्छी हूँ मैं, छुट्टियों में बच्ची का नहीं शिकागो जाके आई।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
3: बोली चक दे इंडिया, बोली रोड पे, बोली बेस्ट इंडिया, बोली
1: इंडिया इज द बेस्ट, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात बहुत बहुत
3: सबको मिस करी मैं, और सब अपने हाथ में है भाई, अपना सोना अपना सोना।

0: दूसरा वो क्या बोलते हैं,
1: बिल्कुल
0: पैदा
1: बिल्कुल
0: उठे मैं
1: हाँ
0: बच्चे को छोड़ दी, भाव को पकड़ ली, बच्चों को पकड़ ली, फिर भी उन्होंने बहनों को अम्मा को ऐसी ऐसी बात लगाते, फिर भी साथ लेके घर, अब 1 महीने के बाद उनके साथ रहूंगी मैं,
1: चलिए बहुत अच्छी बात कि
0: रहेगी
1: आप अपने प्रयत्न कर रहे
0: अपने
1: हैं,
0: बेटा को छोड़ दी मैं।
1: आप अपने प्रयत्न कर रहे हैं ज्वाइंट फैमिली में रहने के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत अच्छा लगा महाजन जी आपसे जुड़ के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों यहाँ पर हम एक प्यारे से गीत की ओर बढ़ते हैं और पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक आप सुनते रहिएगा रेनबो FM 101.9 और करते रहे अपनी लाइफ को रंगीन, क्योंकि दोस्तों रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

0: तो साथियों, ये इस गीत की फरमाइश की थी आदित्य ने, और कहते हैं कि ये गीत आप उन्होंने मुझे डेडिकेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, आज आप सुन रहे हैं साथियों FM रेनबो पर, हेलो रेनबो। और इस पर आज हेलो रेनबो में हमने आपसे पूछा कि भारत में परिवारों के टूटने का कारण क्या है। इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। कॉलर्स की ओर बढ़ने से पहले मैं यही नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया आप अपनी बात संक्षेप में साझा करें ताकि सभी को अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हो। हेलो रेनबो,
1: हेलो।
0: नमस्कार जी।
1: हाँ, मैं सोनू बात कर रहा हूँ। मेरा फोल्डर जो लगा है, मैं माफी मांग रहा हूँ। क्यों बोलते, आपका आवाज मेरे को क्लियर नहीं आया, बोलते
0: कोई बात
1: दोबारा
0: नहीं
1: लगा
0: सोनू
1: है।
0: जी, कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा, विषय टॉपिक पर आप क्या बात करना चाहते हैं।
1: आपको स्वागतम कर रहा हूँ। आप सब
0: धन्यवाद,
1: वाचकों और सब लिसनर को मेरा प्रणाम। तो
0: सभी की ओर
1: मेरा
0: से आपको भी
1: तमाम
0: प्रति
1: प्रकार
0: अभिवादन।
1: मुखर्जी को नमन कर वंदन करूँ। देश के लिए जो करके गया, उनका प्रेरणा सारा देश के लिए, एक बार उनको याद करना। और आज का टॉपिक आपको परिवार आजकल क्यों छोड़ रहे हैं। आजकल परिवार छोड़ने का एक बात है, घर में पहले सब जने रहते थे, आज परिवार बिछड़ गया। इसलिए सबको जॉब नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया, जैसे आपको बाहर आ गए, बाहर शादी कर लिए, बाहर रुके, बाहर
0: सोनू
1: घर
0: जी,
1: द्वार
0: यहाँ
1: खर्च
0: पर आप
1: करे।
0: बोल रहे हैं कि भाई बाहर आ गए इसके लिए, तो भाई परिवार नौकरी तो पहले भी करते थे, कमाई तो पहले भी होती थी। ऐसे थोड़ी था कि पहले कमाई नहीं
1: नहीं,
0: होती थी।
1: पहले सब जने कमाई नहीं करते थे। आप 40 साल पहले पीछे जाओ, भी बड़े बड़े लिस्टनर है, ज्ञानी को पूछो, आपके अनुभव है, बहुत ज्ञान है। आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ, आपको बहुत ज्ञान है। मगर पहले का क्या था, एक जन कमाते थे कि अपना खेती बाड़ी जो होता था, परिवार बड़े जो होते थे, जो खर्च करके लाते थे पहनते थे। आजकल आप लोग आपका मर्जी में कमा रहे हैं, आपका मर्जी में, और
0: खर्च कर रहे
1: बर्तन
0: हैं।
1: भूषण खाना पीना सब खा रहे हैं। एक बात,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: दूसरी बात, गाँव में जो है परिवार, वो लोग एकता है। जो शहर में आप लोग निकल आ गए, आज जो मॉडर्न दुनिया होगा, कलयुग में नारी सब नौकरी करे, इसीलिए परिवार टूट रहे। इसका कारण तो परफेक्ट बात, आपको अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो देख रहा हूँ दुनिया वही बोलो। और
0: चलिए।
1: एक बात, स्वदेशी खिचड़ी पसंद है आपको, विदेशी खिचड़ी पसंद है क्या, एक बार बताओ ना।
0: ये जो बात आपने परिवारों के बारे में बताई, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपनी बात साझा करने के लिए। और साथियों, हम जल्दी से अपने अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो,
1: नमस्कार प्रदीप जी, मैं धूलपेट से संजय सिंह बात कर रहा हूँ।
0: संजय सिंह साहब धूलपेट से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है संजय सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छा है, बढ़िया है। आप कैसे? बहुत दिनों बाद आए हैं।
0: ऊपर वाले का उपकार है, आपकी शुभकामनाएं हैं। और क्या चाहिए बताइए अच्छी जिंदगी के लिए।
1: जी बढ़िया। आजकल संस्कार अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं।

0: टीवी ने थोड़ा खराब किया है, चैनलों ने और थोड़ा खराब किया है, आजकल तो मोबाइल ने तो
1: मोबाइलों ने
0: पूरे
1: पूरा
0: खराब
1: खराब
0: कर
1: कर
0: दिया।
1: दिया। तो आप मेन कल्प्रिट मोबाइल का मानते हैं?
0: देखिए बचपन में हमारे खाली दूरदर्शन रहा करता था, उसके बाद चैनल्स आए, उसके बाद अब देखिए मोबाइल। तो ये वजह से क्या है, संस्कृति पूरी अपनी बंटाधार हो गई है, तो फिर से एक बार लाइन पे लाना चाहिए इसे,
1: तो संजय
0: वरना
1: सिंह जी,
0: हम भी
1: आपके अनुसार इसको लाइन पे लाने का क्या उपाय है?
0: उपाय ये अपने संस्कार, अपने दादा दादी नाना नानी ये सब कैसा जीवन जीते थे, वो संस्कार एक बार फिर वापस आए, तो अपनी संस्कृति अपना जीवन शैली अपन बदलना चाहिए। वेस्टर्न वाले अपना कल्चर सीख रहे, हम
1: बिल्कुल,
0: उनके
1: और
0: कल्चर में चल रहे हैं।
1: हम उनकी देखा देखी कर रहे हैं, वो हमारी देखा देखी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको
0: हाँ
1: बताया ना कि
0: ऐसा
1: जब
0: भी
1: गौरांग दास जी को मैंने सुना, तो उसी में उन्होंने ये बताया था कि भाई बच्चा परिवार का अनुभव करने के लिए भारत आया था।

0: वेस्टर्न वाले अपना कल्चर सीख रहे हैं,
1: बिल्कुल, और हम उनकी देखा देखी कर रहे हैं, वो हमारी देखा देखी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि जब गौरांग दास जी को मैंने सुना तो उसी में उन्होंने वो बताया था कि भाई बच्चा परिवार का अनुभव करने के लिए भारत आया था, तो वो बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने साझा की संजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो साथियों, ये थे संजय सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे साथ साझा की। यदि आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 2323-4821, 2323-4822 या फिर 2970-4715 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हेलो रेनबो।
2: नमस्ते आरजे प्रीति जी।
1: नमस्कार नमस्कार, आप एक बार अपनी तारीफ कीजिएगा।
2: हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल।
1: हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल भाई हमारे साथ जुड़े हैं। बस आपकी यही लाइन सुनने के लिए आपका नाम पूछना पड़ता है इकबाल जी।
2: जी जी जी
1: जी, बताइए।
2: मेरे से एक गलती हो चुकी है यहाँ पर।
1: गलती हो चुकी है?
2: टॉपिक नहीं सुना मैं।
1: अच्छा, आपका आज का टॉपिक है कि भारत में परिवारों के टूटने का कारण क्या है।
2: बहुत बड़ा मच्छर है ये।
1: बताइए।
2: जिंदगी की मसरूफियात और जिंदगी की भागदौड़ जो है हर चीज से, अब जैसा आदमी जब पैदल चलता था तो एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहता था।
1: बिल्कुल।
2: और वहां से जब साइकिल आई तो स्पीड बढ़ गई आदमी के चलने फिरने की,
1: तो वो जो धीमे चलने वालों को छोड़ दिया।
2: जी हाँ जी हाँ, तो ये जो रेस लगी हुई है गाड़ियों की, जहनी दौड़ है ये।
1: जहनी दौड़ है, एग्जैक्टली। पहुंचना कहीं नहीं है, पहुंचना कहीं किसी को, कहां पहुंचना है किसी को कुछ पता नहीं है।
2: जी हाँ जी हाँ,
1: बस दौड़ रहे
2: हैं। जहनी फासले, जहनी दौड़ है, और हर कोई एक दूसरे को फलांगना चाह रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: फलांगना चाह रहा तो दूसरे को पीछे छोड़ दे रहा।
1: छोड़,
2: मगर अपने जो बड़े परिवार जो लोग होते हैं, जो अनुशासन डिसिप्लिन को लेके चलने वाले, हर कोई ये कहते हैं कि भाई आप भी आगे बढ़ो, दूसरे को भी आगे लेके चलो,
1: साथ में लेके चलिए।
2: मगर ये बोलने में सुनने में अच्छा दिख रहा, अमली जामा नहीं पहना सक रहे जिंदगी में, वक्त बहुत कम।
1: लेकिन अमली जामा क्यों नहीं पहना पा रहे हैं?
2: ये अमली जामा जो है ना, इंसान को अपने बड़ों का कहा मान लिए तो बिल्कुल अमल कर सकते। बड़ों का कहना या नहीं मानने की वजह ये है।
1: आपका कहना है कि बड़ों का कहना नहीं मानने के कारण ही परिवार टूट रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल साहब आपका जुड़ने के लिए। साथियों, यहाँ पर एक विशेष जानकारी आप तक पहुँचा दिए देते हैं, स्टे ट्यून्ड।
3: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి ఇచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
4: FM Rainbow 101.9
1: और साथियों आकाशवाणी के उसी FM Rainbow 101.9 पर आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, जहां पर आज हमने आपसे पूछा कि भारत में, हमारे देश में परिवारों के टूटने का कारण क्या है। इस पर कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो रेनबो।
5: सुकुचैन से रहना है तो राधे राधे कहना है, सेहतमंद से रहना है तो राधे राधे कहना है।
1: हम तो सुख और चैन से रहेंगे, राधे राधे राधे कहेंगे। बताइए मुरली जी, कैसे हैं आप?
5: एकदम ठीक है प्रीति जी, आप कैसे हैं?
1: बस आप ठीक हैं तो हम भी ठीक ही रहेंगे, इसीलिए तो कहती हूँ कि मैं आपके धड़कनों पर जीती हूँ आरजे प्रीति हूँ।
5: सही है, तो सही है। और एक क्या है, ये एफएम रेनबो है, एफएम रेनबो के साथ आपका लाइफ रंगीन है।
1: बिल्कुल।
5: हम तो नया नया रंग देख रहे हैं, पुराना रंग भी आया है तो उसमें रस है, अभिमान है और अपने अपना अपनापन है उसमें। आप आते रहिए, पुराना रंग है तो भी क्या है।
1: चलिए, हम अपने उच्चाधिकारियों तक यह बात पहुँचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जगह अपने दिल में देने के लिए।
5: थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। प्रीति जी, जब हथेली में जो स्क्रीन में देख रहे हैं, परिवार नहीं टूट रहे ऐसा देख रहे हैं, अपने धर्म से दूर हो रहे हैं, बस इतना ही कहने का है। धर्म से दूर होने का मतलब क्या है? वो परिवार टूट रहा है क्या है? ये हथेली में देख रहे हैं, परिवार को क्या हो रहा है
1: वो नहीं देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत
5: ये हाल हो गए, सो है प्रीति जी।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुरली जी। हाँ,
5: और एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जो तेलुगु में मొక్కల గురించి అంత వివరణగా మీరు చెప్పారు, పెద్ద పెద్ద పదాలని, ఇబ్బందికరమైన పదాలని తెలుగులో బాగా స్పష్టం

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 12 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

बिसात गज़ल सिलसिले के तहत जनाब ज़ामिन अली हसरत का कलाम आप सुन सकेंगे। सामईन, आज ज़ोनोसिस बीमारियों की रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस हवाले से कुछ बातें होंगी, साथ साथ कुछ फिल्म गीत भी आप सुन सकेंगे।

0: तो ये थी आज के प्रोग्राम की तफसीलात। आइए सुनते हैं हर्फ ताबिंदा।
1: जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां उसे ये फैसला करना होता है कि सख्ती से अपनी बात मनवा ली जाए या फिर थोड़ा सा झुककर मामला बेहतर तरीके से हल किया जाए। अक्सर लोग समझते हैं कि समझौता करना कमजोरी की अलामत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। समझौता करना एक ऐसी महारत है जो इंसान को ना सिर्फ मजबूत बनाती है बल्कि उसे जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी के करीब ले जाती है। ये एक जहनी पुख्तगी है, एक शऊरी फैसला है और एक ऐसा रवैया है जो ताल्लुकात को मजबूत करता है, मसाइल को हल करता है और इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। सामईन, समझौता करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान अपनी इज्जत नफ्स छोड़ दे या फिर अपनी अहमियत कम कर दे। इसका मतलब तो यह है कि इंसान हालात को समझकर, दूसरों के नुक्ते नजर को देखकर और बड़े मकसद को सामने रखकर एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो सबके लिए बेहतर हो। ये रवैया सिर्फ समझदार लोग ही अपनाते हैं और जो कमजोर लोग होते हैं अना में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, हर बात में अपनी ही जीत चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का किरदार मजबूत होता है वो ये जानते हैं कि हर जंग जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीछे हटकर आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। समझौता करना ताल्लुकात में सबसे अहम किरदार अदा करता है, चाहे वो घर हो, दफ्तर हो या फिर दोस्तों का दायरा हो। हर जगह इंसान को मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से वास्ता पड़ता है। अगर इंसान हर बात में अपनी राय को हतमी समझे तो फिर ताल्लुकात में दरारें पड़ना लाजमी है। लेकिन अगर वो थोड़ा नर्म रवैया इख्तियार करे, दूसरों की बात सुन ले और उनके एहसास को भी अहमियत दे तो फिर ताल्लुकात मजबूत होते चले जाते हैं। समझौता मोहब्बत को बढ़ाता है, एतमाद को पैदा करता है और दिलों को करीब लाता है। बात की जाए पेशावराना जिंदगी की तो पेशावराना जिंदगी में भी समझौता करना एक अहम महारत है। एक कामयाब लीडर वही होता है जो अपनी टीम के साथ नर्म रवैया इख्तियार करता है, उनकी बात को भी अहमियत देता है। वो ये जानता है कि हर शख्स की सोच मुख्तलिफ होती है, वो दूसरों की राय को अहमियत देता है और अपनी बात मनवाने के बजाय बेहतरीन हल तलाश करने की कोशिश करता है। ऐसे लीडर के साथ टीम खुश रहती है, बेहतर कारकर्दगी दिखाती है और पुरएतमाद होकर काम करती है। इसके बरअक्स वो लोग जो हर बात में सख्ती दिखाते हैं वो ना सिर्फ अपनी टीम का एतमाद खो बैठते हैं बल्कि खुद भी तनहा रह जाते हैं। समझौता करना जहनी पुख्तगी की अलामत है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अपनी अना से ऊपर उठकर सोच सकता है, वो हालात को समझ सकता है, वो जज्बात के बजाय अकल से फैसला कर सकता है। यही वो रवैया होता है जो इंसान को मजबूत बनाता है। कमजोर लोग समझौता करना नहीं जानते, वो डरते हैं कि कहीं लोग उन्हें कमजोर ना समझने। लेकिन हकीकत यह है कि समझौता करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए और इसके लिए इंसान को अपने अंदर एतमाद पैदा करना होता है। समझौता करना मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका है। जब दो लोग या दो गिरोह किसी मसले पर अड़ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मामला मजीद बिगड़ जाता है, लेकिन अगर दोनों थोड़ी सी लचक पैदा कर लें तो फिर मसला आसानी से हल होता है। दुनिया के बड़े बड़े माहदे, बड़ी बड़ी कामयाबियां और बड़े फैसले उसी वक्त मुमकिन हो पाए हैं जब लोगों ने समझौता किया है। अगर हर शख्स अपनी जिद पर कायम रहने लगे तो दुनिया कभी तरक्की ही नहीं कर सकती। समझौता करना वक्त की बचत भी करता है, ये वक्त को जाये होने से बचाता है। जिद और बहस में अक्सर वक्त जाया हो जाता है, जज्बात भड़कते हैं, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, लेकिन समझौता करने से इंसान जल्द ही नतीजे तक पहुंच जाता है। वो अपनी तवन्नाई मुस्बित कामों में लगा सकता है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। ये

0: मैं हटूंगा मैदान जंग से अब, मुझ में अब भी है बाकी वो हौसला भी दम भी। हरगिज ना मैं हटूंगा मैदान जंग से अब, मुझ में अभी है बाकी वो हौसला वो दम भी। तन्हा खड़ा हूं कब से दुश्मन के सामने में, तन्हा खड़ा हूं कब से दुश्मन के सामने में, लेकिन उखड़ गए हैं दुश्मन के अब कदम भी। तन्हा खड़ा हूं कब से दुश्मन के सामने में, लेकिन उखड़ गए हैं दुश्मन के अब कदम भी। क्या खूब खेल खेला किस्मत ने आज हमसे, क्या खूब खेल खेला किस्मत ने आज हमसे, दुश्मन तो सैकड़ों थे रूठा है अब सनम भी। क्या खूब खेल खेला किस्मत ने आज हमसे, दुश्मन तो सैकड़ों थे रूठा है अब सनम भी। सीखा है जिंदगी की इन ठोकरों से हमने, सीखा है जिंदगी की इन ठोकरों से हमने, आगोश में खुशी के मिलते हैं कितने गम भी। सीखा है जिंदगी की इन ठोकरों से हमने, आगोश में खुशी के मिलते हैं कितने गम भी। मशकूर हूं खुदा का हिम्मत मुझे वो दी है, मशकूर हूं खुदा का हिम्मत मुझे वो दी है, तरियाग बन गया है मेरे लिए तो सम भी। मशकूर हूं खुदा का हिम्मत मुझे वो दी है, तिरयाग बन गया है मेरे लिए तो सम भी। समझूं इसे मैं क्या वो गुस्सा तो कर रहे हैं, मुलाजा करेंगे, समझूं इसे मैं क्या वो गुस्सा तो कर रहे हैं, आंखें मगर हैं उनकी मेरे लिए तो नम भी। समझूं इसे मैं क्या वो गुस्सा तो कर रहे हैं, आंखें मगर हैं उनकी मेरे लिए तो नम भी। मख्ता मुलाजा करेंगे, हम बेरुखी से उनकी नाराज कब है हसरत, हम बेरुखी से उनकी नाराज कब है हसरत, उनके सितम में शामिल रहते हैं कुछ करम भी। हम बेरुखी से उनकी नाराज कब है हसरत, उनके सितम में शामिल रहते हैं कुछ करम भी। इंसाफ बिक रहा है बिकते हैं अब कलम भी, मजलूम पर ही मुंसिफ करता है हर सितम भी।
1: समईन बिसाते गजल आप समाप्त कर रहे थे, ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां के संग। अब वक्त हो चला है सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से कुछ बातें करने का। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज जोनोसिस बीमारियों की रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया है। हर साल 6 जुलाई को दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। आज का दिन महज सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इंसानों और जानवरों के दरमियान सेहत के गहरे ताल्लुक को समझने का एक अहम मौका भी है। आपको बता दें कि जो बीमारियां कुदरती तौर पर जानवरों, चाहे वो पालतू हो या जंगली, उनसे इंसानों में मुंतकिल होती है, तो उन बीमारियों को जोनोसिस कहा जाता है। 6 जुलाई सन 1885 को मशहूर फ्रांसीसी साइंसदान लुईस पास्टर ने तारीख में पहली मरतबा एक बच्चे को कुत्ते के काटने का टीका लगाया था, और फिर जब से 6 जुलाई को जोनोसिस बीमारियों की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जाता है। आज के दिन शौर बेदारी के कई प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं और जोनोसिस बीमारियों से फैलने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है उसके बारे में आगाही पैदा की जाती है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों में पाए जाने वाले तमाम मुतादे जरासीमों में से 60% से ज़ायद जानवरों से आते हैं। दुनिया में फैलने वाली हर 4 नई बीमारियों में से 3 बीमारियां जोनोटिक नौयत की होती हैं, जैसे COVID-19, नीफा वायरस, मंकी पॉक्स, बर्ड फ्लू वगैरह। आलमी दायरे सेहत का कहना है कि दुनिया भर में लगभग 200 से ज़ायद बीमारियाँ जोनोटिक हैं। इन बीमारियों के फैलने की क्या वजूहात है और इसे किस तरह से बचा जा सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बातचीत के साथ साथ फिल्मी गीत भी آپ کو

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर, और आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा अब्दुल अफशां के संग। समय जैसे कि हमने आपको बताया था कि जोनोसिस बीमारियों से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत होती है, और उन बीमारियों से बचना मुश्किल नहीं है बल्कि मुमकिन है। बस हमें करना ये होगा कि अपने पालतू जानवरों और मवेशियों को रेबीज़ और दीगर बीमारियों की वैक्सीन लाजमी लगवाएं, जानवरों को छूने, उनकी साफ़ सफाई करने या फिर उनके चारे को हाथ लगाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोया जाए। इतना ही नहीं, दूध हमेशा अच्छी तरह उबाल कर भी पीने की ज़रूरत है। हशरात से बचाव के लिए भी हमें इकदाम करने होंगे। मच्छरों और दीगर बीमारियां फैलाने वाले कीड़ों से या फिर हशरात से बचने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि पानी जमा होने से मच्छरों की अफजाइश होती है, और फिर यही मच्छर होते हैं जो अपने संग ढेरों बीमारियां ले आते हैं। अपने घर के अंदर के साथ साथ अपने घर के बाहर भी साफ सफाई का खास ख्याल रखें। सामईन, आलमी योम जोनोसिस पर हमारा पैगाम यही है कि सेहतमंद जानवर, महफूज इंसान और तंदुरुस्त सैयारा। याद रहे, एहतियात इलाज से बेहतर है, और अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती, हमने अपने आप को, अपने आसपास को, अपने माहौल को साफ सुथरा ना रखा, तो फिर कोई भी बीमारी कभी भी दस्तक दे सकती है। किसी भी वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी है, साफ सफाई का ख्याल रखना लाजमी है। तो सामईन, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द मौजूदा जानदारों का भी ख्याल रखें, और मुतादी बीमारों से महफूज रहें।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयशा बतुल्लफ़्शा। समय इन स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:09 और 50 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है सुरीले गीतों से सजे प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा का। समय गीत सुरीले गाते जा में आज हम एक ऐसे नगमा निकार की बात करेंगे जिन्होंने सिर्फ 109 ही गीत लिखे, लेकिन उन 109 गीतों ने फिल्मी शायकीन के दिलों पर अनमिट नखोश छोड़े हैं। उन गीतों को आज भी गुनगुनाया जाता है। वो नगमा निगार कौन हैं और उन्होंने सिर्फ 109 नगमे ही क्यों लिखे, ये सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं ये गीत और हमें उम्मीद है कि इस गीत को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि आज हम कौन से नगमा निगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बेहद मकबूल हुआ था और आज भी लोग इसे पसंद करते थे। गीत को आवाज़ दी थी लता जी ने। लीजिए सुनिएगा।

ये गीत सन 1972 में आई फिल्म शोर का है। आवाज़ें लता जी और मुकेश जी की हैं और इस गीत को लिखने वाले हैं संतोष आनंद। जी हाँ सामईन, आप शायद इस गीत को सुनकर ये जान गए होंगे कि आज हम संतोष आनंद की बात करने जा रहे हैं। संतोष आनंद जी ने, जैसा कि हमने आपको बताया था, बॉलीवुड में सिर्फ 109 नगमे लिखे हैं और सिर्फ 2 नगमों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। वो एक मशहूर नगमा निगार हैं। उनका शुमार हिंदी के उस्ताद शोरा में होता है। और आपको ये भी बता दें कि अदाकार मनोज कुमार संतोष आनंद से बेहद मुतासिर हुए थे। कहा जाता है कि एक बार मुशायरे में मनोज कुमार ने उनकी शायरी सुनी और उनसे मिलने के लिए कहा।

लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से संतोष आनंद मनोज कुमार से मुलाकात करना भूल गए। बादशाह उन्होंने संतोष आनंद को अपनी आने वाली फिल्म शोर के लिए नगमा लिखने को कहा। और इससे पहले मनोज कुमार अपनी फिल्म में वर्मा मलिक से नगमा लिखाया करते थे। और जो गीत अभी हमने आपको सुनाया, इस गीत के जरिए ही संतोष आनंद ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। 5 मार्च 1929 को संतोष आनंद यूपी के सिकंदराबाद के गाजियाबाद से जीटी रोड से 30 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर में पैदा हुए थे। उनके घर का माहौल अदबी होने की वजह से संतोष आनंद भी अदब से बहुत करीब हुए, जिसकी वजह से उन्हें शायरी का शौक पैदा हुआ। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में डिग्री हासिल की, दिल्ली में मुकीम हुए और वहीं पर एक लाइब्रेरियन के ओहदे पर फायज हो गए, मगर उन्होंने अदब व शायरी को मजबूती से पकड़े रखा। समाइन संतोष आनंद जी के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा गया एक और प्यारा सा गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। बज्म सजी है, गीत सुरीले, गाते जासे और हम बात कर रहे हैं संतोष आनंद की। जो गाना अभी आपने सुना वो गाना था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का। गीत को आवाज़ें दी थी लता जी और मुकेश जी ने और गीतकार थे संतोष आनंद जी। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे और ये फिल्माया गया था शशि कपूर, जीनत अमान पर। और इसमें एक और अदाकार भी थे, मनोज कुमार। तो समय, जैसा कि आप जान गए हैं, हम संतोष आनंद जी की बात कर रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया कि उन्हें अदब से खासा लगाव था। वो दिल्ली में एक लाइब्रेरियन के ओहदे पर फायज हुए, लेकिन उन्होंने अदब व शायरी को कभी नहीं छोड़ा। शायरी में उन्होंने बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया था और कहते हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की परचम कुशाई के मौके पर मधु किया करते थे। यहाँ तक कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उन्हें बुलाया करते थे और वो संतोष आनंद को शायर जी कहकर मुखातिब किया करते थे। परचम कुशाई के बाद शेरी नशिस्त रखी जाती थी और उन्होंने अपने करियर का आगाज सन 1970 में मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम से किया था। फिल्म के बहुत सारे गीत हैं जो काफ़ी मकबूल हुए थे और उन्हीं के लिखे गए गीतों में से आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

फिल्म क्रांति का ये खूबसूरत सा गीत था। आवाज़ें थी लता जी और नितिन मुकेश की। गीतकार थे

संतोष आनंद, मौसीकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए थे हेमा मालिनी और मनोज कुमार ने। सामईन, आपको बता दें कि सन 1981 में आई ये फिल्म क्रांति उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, और संतोष आनंद और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी इतनी मकबूल होने लगी कि तमाम फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही नगमों की मौसीकी तरतीब दी। कहा जाता है एक मरतबा तो संतोष आनंद ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से फ़ोन पर बातचीत के दौरान ही नगमा लिख दिया था। उन्होंने सन 1974 में मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी बेहतरीन नगमे लिखे। मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तरतीब दी थी। फिल्म के बहुत सारे नगमे मकबूल हुए थे जिनमें मैं ना भूलूंगा वो दीकर शामिल हैं, और उन गीतों को आवाज़ दी थी लता जी और मुकेश जी ने, और उसी फिल्म के लिए संतोष आनंद को उसी नगमे के लिए संतोष आनंद को बेहतरीन नगमा निगार का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। संतोष आनंद जी के बारे में और भी बातें करते रहेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सामईन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाता जा। जो खूबसूरत सा गीत आपने सुना वो गीत गाया था लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मनहर उदास ने। सन 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत था। फिल्म में अदाकार थे मनोज कुमार और अदाकारा थी सायरा बानो। समिन, संतोष आनंद जी ने फिल्म प्यासा सावन के भी गाने लिखे। सन 1981 में फिल्म क्रांति का गाना लिखने के बाद 1982 में उन्होंने फिल्म प्रेम रोग में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी के साथ एक नगमा लिखा जो कि बहुत मकबूल हुआ। नगमे के बोल है मोहब्बत है क्या चीज़, और इसी नगमे के लिए उन्हें बेहतरीन नगमा निकार का दूसरा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत।

सन 1982 में आई फिल्म प्रेम रो का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता जी और सुरेश वाडकर की, नगमा निगार थे संतोष आनंद जी, म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए थे पद्मिनी कोल्हापुरी और ऋषि कपूर ने। संतोष आनंद जी के नगमों के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी ने उनके नगमों को चार चांद लगा दिए। इन नगमों के लिए म्यूजिक रिकॉर्ड एलपी का भरपूर ताउन रहा और कहा जाता है कि यही वजह से गीत बेहद मकबूल हुए। संतोष आनंद जी के कुछ मशहूर गीतों में एक प्यार का नगमा है, तेरा साथ है तो, ये गलियां ये चौबारा, मैं ना भूलूंगा, मेघा रे शामिल हैं। इन तमाम नगमों को आवाज दी थी लता जी ने। उन्होंने अपनी मीठी और दिलकश आवाज से इन गीतों को मकबूलियत बख्शी। अनुराधा पौडवाल ने भी सन 1992 में आई फिल्म जुनून और 1992 में ही आई फिल्म तहलका के लिए अपनी आवाज दी। जबकि मुकेश जी, महेंद्र कपूर और मोहम्मद अजीज ने भी संतोष आनंद के लिखे हुए गीतों को

अपनी आवाज़ दी और ये गीत काफ़ी मकबूल हुए। बात की जाए उनकी मशहूर फिल्मों की तो उनमें पूरा पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, प्यासा सावन, प्रेम रोग, लव 86, जुनून, तहलका, तिरंगा, प्रेम अगन, बड़े घर की बेटी, मजलूम, मेरा जवाब सर फहरिस्त है। सन 1990 के ख़त्म होते होते संतोष आनंद जी ने सिर्फ 109 नगमे लिखे थे, लेकिन ये 109 नगमे ही हैं जो फिल्मी शायकीन के दिलों पर राज करते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और नगमा।

समीन, फिल्म क्रांति का ये गीत था। आवाज़ें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और नितिन मुकेश की। गीतकार थे संतोष आनंद जी, म्यूज़िक था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का। तो समीन, आज के गीत सुरीले गाते जा में हमने बात की संतोष आनंद जी की। आज संतोष आनंद जी 97 साल के हैं, लेकिन उन्हें शायरी से वैसा ही लगाव है जैसा उन्हें पहले था। उम्मीद करते हैं आपको संतोष आनंद जी की ज़िंदगी के बारे में जो कुछ हमने कहा, जो मालूमात आपको दी, वो पसंद आई होगी।

मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार खुद एहतसाबी और अपनी गलतियों पर गौर फिक्र करना चाहिए। आज का पैगाम ये है कि इंसान को अपने फैसलों और आमाल का जायजा लेते रहना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए या नुकसान पहुंच जाए तो उसका एहसास होना और उससे सबक हासिल करना जरूरी है। अपनी कोताहियों को मामूली समझना या उन पर नदामत महसूस न करना इंसान

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, चंद ही लम्हों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध

0: सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। बोथ हैड स्टेप्ड डाउन आफ्टर द नेम्स सरफेस्ड इन द अलेज्ड राम टेंपल डोनेशन एम्बेजलमेंट केस। Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀರಾ

0: Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these codes, before these numbers, if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. Shrotaon, aaj kyunki somvar hai aur har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe is karyakram mein shamil karenge. Is karyakram mein vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn aap humse pooch sakte hain. Inhe poochne ke liye aap hame call kar sakte hain 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजार में मिला जुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई. दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की. आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी

0: की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग आधा प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई।
1: The Dow Street kicked off the trading week on a strong note, with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.4%, while the small-cap 100 index gained more than 0.7%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks quality tilt index added 1.4%. In contrast, PSU bank index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
2: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है। दूसरा, जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप GST लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है।
1: Right, Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
2: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that

0: this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear.
1: Mm-hmm.
0: And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
1: We'll come back to that. But before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
2: Namaskar, sir.
1: Namaskar.
2: Deep Sisha, madam, ko namaskar, ma'am.
0: Namaskar, Amit ji.
2: Ek to Nishit sir ne sawal pooch liya hai kisi related. मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले जून के महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी मैम तो क्या रीजन था दूसरी चीज जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को धन्यवाद
0: अमित जी पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है ईवी इलेक्ट्रिकल्स में जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है डिमांड काफी है तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है और दूसरा आपका जो सवाल था परफॉर्मेंस
1: यस ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स
0: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है
1: राइट right.
3: दीपशिखा मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ बहुत हमारा हम देखिए बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में या निवेशकों के लिए साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी मगर इसके बाद
0: प्राची अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
3: जी
0: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है अपना जो परफॉर्मेंस है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
3: जी।
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे
1: या प्राची यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर बट दीपशिखा जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक वी सॉ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग दैट

0: Sanand plant of the semiconductors, you know, wherein India would be producing, that plant, the CG plant would be producing more than 5 billion chips, you know, annually. And that's a humongous number, considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially for country from countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now, with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
1: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at. And the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything
0: across
1: these
0: the
1: days,
0: board, yes.
1: across sectors.
0: Yes.
1: So definitely, it is a sunrise sector, but we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have a interplay with infrastructure development.
0: Electronics.
1: Electronics, definitely.
0: Yes.
1: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer you know, sectors, the FMCG sort of sectors.
0: Absolutely, absolutely.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं, जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है, आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम आते हैं, एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है, आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था, वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक, ये तेल वो खत्म हो जाएगा, जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद.
1: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के. फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए. यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है, अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है. दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको

0: और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी। और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम।
1: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफ़ी उसमें बहुत तेज़ी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
2: Right, and moving on to oil sector now, the global crude oil prices fell moderately today after OPEC Plus agreed to further increase its output targets from August. Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120 to $71, and the WTI trading at around $68. How do you see this panning out in the coming days? Would it be seeing another spike or coming down to around $50 or $55?
1: Well, I think for Indian economy, crude sliding to these levels definitely a very good news, very positive news. But if you see, you know, the kind of destruction that the entire oil and gas infrastructure saw during the conflict, there is apprehension that the supplies may not rise to pre-conflict levels. So while you know, OPEC has said, OPEC Plus, they want to, they will boost supplies. There's Venezuela crude also, which is sort of coming to the market, which will keep the pressure on in the crude market. It is expected that it may sort of not really dive below, but remain at these levels.
2: And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.3% down at 1,47,410 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 2,37,330 rupees per kilogram a short while ago.
3: Multi-commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.3% ghatkar 1,47,000 rupees per 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.1% ludakkar 2,37,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। अदीप शिखा कार्यक्रम में आने हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद प्राची।
2: थैंक यू दीपशिखा। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। The benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend. And global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Prachi Priya signing off. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज है ये। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 और 24 सेकंड हो चुके हैं। अभी अभी जो आपने गीत सुना वो आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और आज आपके साथ गीत मेरे मनमीत में है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। लीजिए आनंद इस गीत का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

11:55 और 4 सेकंड हो चुके हैं। अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस से ये गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज होगी, फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और गीत के साथ ही अर्पना को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव

वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

सावन को आने दो फिल्म से आपने ये गाना सुना। जसपाल सिंह की आवाज में गौहर कानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजकमल ने। उमस भरी गर्मी, बारिश का बेसब्री से इंतजार, शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद फिर वही सोमवार की भागदौड़। दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद अब जाकर मिले हैं ये सुकून भरे लम्हात, जहां मन ठहर सा गया है। ऐसे ही शांत पलों में पुराने गीतों की मधुर धुनें दिल को सुकून देती हैं और दिन भर की सारी थकान जैसे हवा हो जाती है।

पहली फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

बदलते रिश्ते फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आजकल अपने पसंदीदा गीत सुनने के अनगिनत जरिए मौजूद हैं। मोबाइल, म्यूजिक एप्स और इंटरनेट पर तो बस एक स्पर्श की देरी है और मनचाहा गीत हमारे सामने होता है। लेकिन इन सब के बीच भी जब अचानक रेडियो पर वही पसंदीदा नगमा सुनाई दे जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस पल की खुशी, वो अनायास मिलने वाला एहसास और उस गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। शायद इसलिए कि रेडियो सिर्फ गीत नहीं सुनाता बल्कि उनसे जुड़ी यादों, भावनाओं और अनकहे एहसासों को भी फिर से जिंदा कर देता है।

फासले फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फासले फिल्म से गाना आपने सुना लता मंगेशकर किया, माफ कीजिएगा शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा गीत सुनना किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं होता, जैसे कोई बिना बताए हमारी मनपसंद चीज हमें उपहार में दे दे और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज ही तो जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं, इसलिए रिश्तों में बड़े नहीं छोटे छोटे तोहफों का आदान प्रदान भी होता रहना चाहिए, क्योंकि तोहफों की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा अपनापन और स्नेह मायने रखता है। किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बस एक छोटा सा उपहार या प्यार भरा एहसास ही काफी होता है।

रजनीगंधा फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। और हाँ, हम जब हम छोटे छोटे तोहफों की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगे हों। एक छोटा सा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी किसी के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखेर सकता है। ये जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी महक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में। मखदूम मोहिउद्दीन ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात की खामोशी में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरने वाला रजनीगंधा फूल सचमुच अनोखा है। दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं भी इसके सामने फीकी सी लगती हैं। एक बार इसे आजमा कर तो देखिए, एक बार किसी को तोहफे में दे कर तो देखिए। यकीन मानिए, इसकी महक इतनी मनमोहक होती है कि रात भर आपका साथ निभाती है और सपनों तक को महका देती है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

एक दिल सौ अफसाने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, जैसे इस चमन में फूल

ही फूल खिले हों। तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह सुनहरी लगती है और तुम्हारी याद से हर शाम सुरमई हो जाती है। जीवन की राहों पर जब भी नजर उठती है, हर दिशा में तुम्हारा ही एहसास साथ चलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्नेह मेरे जीवन के हर पल को महका देता है।

बॉयफ्रेंड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उस नजर को सलाम जिसमें अपनापन भी है, स्नेह भी है और अनकही मोहब्बत का एहसास भी। एक ऐसी नजर जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है, थके हुए मन को सुकून दे जाती है और जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बना देती है।

हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब प्रेम सच्चा हो तो कदम सोचकर नहीं दिल की धड़कनों के साथ चल पड़ते हैं। उस बेखुदी में मंजिल से ज़्यादा साथी का साथ मायने रखता है।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद अली ने। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर ऋतु उसी की खुशबू बन जाए, तब प्रेम शब्दों से नहीं मुस्कुराहटों और एहसासों से जिया जाता है।

लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमती रात की खामोशी में चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा है, दिल की अनकही बातें हवाओं के संग बह रही हैं और हर पल प्रेम की एक नई कहानी बनता जा रहा है।

असली नकली फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सच्चे प्रेम में विश्वास और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी उसे संभाल कर रखने की चाह भी होती है। प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और उसके साथ हर पल बिताने की आकांक्षा का भी नाम है।

भारती फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जिससे सच्चा प्रेम हो उसके बिना ना मन को चैन मिलता है, ना जीवन की कोई खुशी पूरी लगती है। उसकी याद हर पल साथ रहती है और मिलन की चाह मन में हमेशा

राजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 37 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

दिले नादान फिल्म से आपने गाना सुना। लता और किशोर की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात सुरमई हो, चांदनी अपनी नरम चादर बिछा रही हो और हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक खुली हो, ऐसे लम्हों में ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो दिल में उतर आते हैं।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इसे लिखा जानेसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। सुरमई रात ही रात की अपनी ही एक खामोश जुबान होती है, चांद की चांदनी, तारों की टिमटिमाहट और ठंडी हवाओं की सरगोशियां मिलकर ऐसा समा रच देती हैं जहां हर धड़कन किसी भूले बिसरे गीत का सुर बन जाती है।

कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कभी कभी किसी की एक मुस्कान, एक नजर या एक मुलाकात जिंदगी के हर रंग को और भी गहरा बना देती है। दिल अनजाने ही किसी की मोहब्बत के जादू में बंध जाता है और फिर हर मौसम, हर हवा, हर धड़कन उसी का एहसास कराने लगती है।

राम तेरी गंगा मैली से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म से आपने गाना सुना। लता और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर से जीवन संगीत बना और संगीत से हर एहसास को एक नई पहचान मिली। कुछ धुनें मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ यादों को फिर से जगा देती हैं, तो कुछ चुपचाप दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इन्हीं मधुर सुरों के साथ जीवन के हर रंग को महसूस करें। जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में धड़कता है एक एहसास।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का निमंत्रण है। आज की ये शाम मुस्कुराहटों, मधुर सुरों और दिलों की धड़कनों के नाम है। आइए संगीत की लय में खो जाएं और इस खूबसूरत शाम को प्यार के रंगों से सजा दें।

लम्हे फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरि ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चुग के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रो नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा

हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

हम भी यही चाहते हैं कि आपका प्यार जिससे है वो आज भी रहे और कल भी रहे। ये गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। नीरज द्वारा लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

दोस्तों, दोस्ती में यही फायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात का यकीन किया करते हैं और पहले भी किया करते थे। जो बात कह दी बस पक्की हो गई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत था और रोशन का संगीत।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर FM गोल्ड चैनल, और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

0: तीन देवियाँ फिल्म से भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे सच्चा झूठा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चौधरी।

चोरी चोरी, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हंसराज जयपुरी की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे राज फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलशन बावरा का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, दिल में कितनी बातें होती हैं ना। कुछ बातों को आप अपनों से साझा कर देते हैं और कुछ हम अपने जहन में दबा कर चलते रहते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते और ना ही आपकी बात का तमाशा बनाते हैं। होता है ना ऐसा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और अब अगला गीत, ये रास्ते हैं प्यार के।

फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों जी तो हमारा भी नहीं करता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। समय कह रहा है कि अब चले जाना चाहिए, लेकिन अगले कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े

पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रो नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2,700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ गीत तो ऐसे होते हैं, दिल करता है हम भी साथ साथ गुनगुनाते रहें। मना किसने किया है? जी हाँ, गुनगुनाइए ना। दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। सोनिक अमिका संगीत था और जीएल रावल की रचना थी। अगला गीत आप सुनेंगे फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। कमर जलालाबादी की रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

0: सो कितने अच्छे लगते हैं ना ये गीत। और जब जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें इनकी लाइंस जो हैं बहुत अच्छे तरह से रट गई हैं। और पहले तो भगवान कृष्ण के जो भजन हैं लोग इन गीतों के माध्यम से इन्हीं धुन पर ही बना लिया करते थे। खैर, अगला गीत आप बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म का है।
1: ये झूम

आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म थी नई राहें और आवाज़ हेमंत कुमार की और लता मंगेशकर की थी। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा था रवि ने।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं आप अपने दोस्त वंदना चौक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को सुनते हुए आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ गुनगुना भी रहे होंगे।

मदारी फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फारूक कैसर ने गीत के बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के। इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सच में जो मेहनत करना जानता है, धरती उसे पुकार कर कहती है कि मुझे छू लो। और जो मेहनत करता है ना दोस्तों, वो बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ जाता है और अपना नाम रोशन कर ही देता है। पैसों से शोहरत नहीं बनाता, बल्कि कर्म करके ही शोहरत कमाई जाती है।

दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ कोई साथ देता है किसी काम में, और साथ देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमें साथ मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। घर में भी हम लोग जब काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य जब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और काम जल्दी निमट जाता है, फिर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप को जहाँ भी मौका मिले, आप अपनों की तो कम से कम ज़रूर मदद कीजिए, ताकि हर कोई एक दूसरे को सहारा समझे और एक दूसरे का सहारा बने। हर कोई ये सोचे कि कोई काम करना किसी के लिए या किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हमारे अपने हैं जिनका हम साथ दे रहे हैं।

यादगार फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत आप सुनेंगे बैजू बावरा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

जी हाँ दोस्तों, साथ ऐसा ही होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में दी गई चीज़ों का उदाहरण दे सकें। और अब अगला गीत श्री 420 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा ये कौन सा गीत बजने वाला है।

दोस्तों, अब अगला गीत आप सुनेंगे। आपको ये गीत पसंद ज़रूर आएगा और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और इस फिल्म में, और फिल्म का नाम तो आप जान ही जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म है, और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इस गीत को लिखा गया तो लिखने वाले ने भी ज़रूर ईश्वर की रचना को बहुत सोच विचार किया होगा, और ईश्वर ने भी तो सोचा होगा कि मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ, वो जाकर भूल जाता है क्या? आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी फिल्म है, किसका गाया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुकेश का गाया ये गीत है।

दोस्तों, इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और मुकेश ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया था, और फिल्म तीसरी कसम से ही गीत था। वाकई में ही धन दौलत सब यहीं रह जाएगा और अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। खैर, अब समय हो रहा है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो उपयुक्त नामों

0: की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है, हम आपको दिखाएंगे। और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the king and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Mr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the four Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's leather and footwear sector, which currently exports goods worth around $4.5 billion, has significant growth potential, with 38 developed countries opening their markets to Indian products through free trade agreements, FTAs. These countries include the

FM गोल्स पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब कार्यक्रम होगा भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना आपने सुनी सांझ और सवेरा फिल्म से, शैलेंद्र के बोलते और शंकर जय किशन का संगीत। दोस्तों, अकेले में इंसान अपनी बात को केवल उसे ही सुना सकता है ना जिसे वो सच्चा प्यार करता है, और उसे मालूम है कि उसके भावों को कोई समझ नहीं सकता केवल उसके अलावा।

काबुली वाला फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे उपनिषदों में कही गई हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों इधर उधर उलझते रहते हैं।

सच बात है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, और उसकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है। हम जैसा उसे मानते हैं वैसा ही पाते हैं।

दोस्तों, जब हमारी नैया भवसागर में फंस जाती है तो केवल उसका ही सहारा लिया जाता है और उसे ही पुकारा जाता है। सन्यासी फिल्म से उससे पहले आपने गीत सुना और ये रचना थी भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और इस कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।